ज्ञान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग में जोत प्रगटावे, तिन संतन की बांझो दूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाइये, पूर्व लिखे का लिखे आ पाइये, दुख सु प्रभु देवनहार, अवर त्याग तुत से।

परेशान अष्टभली अविनाशी ब्रह्मन में राग मानो की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नहीं किस कोए सर्व निरंतर एक को सोए आपे बिना आपे जाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल भगशांद सातरे की चरणी पाओ नानक के मन ये नाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सो ही होग हरन परन जा का नेत्र भोर तिस का मंत्र न जाने और अनंद रूप मंगल सत जाक सर्वथोग सुनिए करता कै राज में राज योग में जोगी तब में तपीसर गृहस्थ में भोगी त्याय त्याय भगता सुख पाया नानक तिस पुरुख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मेत नाए सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम ते आवे से ते गुण में जाको फरमाए जन्म मरे फिर आवे जा।

अहंकार नाना चलत करे खिनवाए, पूरे ओ पूरन सब ठाए, नाना विध कर बंध बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड।

ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राख निंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक साथ साथ मारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेव को नाम जपाई, अपने सेव की आपस रखे, ताकि गत में कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दादक पगटाया, निकी कीरी में कल रखे, पसम करे लश्कर कोट लाख, जिसका साथ न काटते आप, ताको राख दे कर हाथ, मानस जतन करत बहुपात, जिसके करत विरथे जात, मारे ना रखे अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ लख विडानी, बारम बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ये मंत्र तपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, जिसके अवर नाही दिष्टाया, नाम तन नाम हो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रास जो जनते पतान, मंत्र नामे नाम समान, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम, बोलो जस जे बाद निरात, प्रभु अपने जन की नींदात, करे भक्त आत्म के जाए, प्रभु अपने सो रहे संभाए, जो हो वह होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुकुम पहचाने, जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण क्या एक न जानो, आठ पह प्रभ से हजूरे,

ज्ञान ध्यान सच गैर गंभीरा, कोई न जाने तेरा चीरा। जेती है तेती तुद जाचे, कर्म मिले सो पाइंदा। कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, वे प्रभा अखुट भंडारे। तू दयाल कृपाल सदा, प्रभ आपे मेल मिलाइंदा। आप

सर्व निरंजन राया सोख पै भंजन प्रभ अविनाशी रोह कटे काटी जम फासी नान घर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ आया काले कवल निरंजन जाने बूझ जय कर्म सो।

जाने सो निरपो गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मंडो लाया निरपो शुभ अब अंतर वसया है नस नाम निरंजन रसया नानक हर जस संगत पाई है हर सहजे सहज मिलाया अंतर बा हर सु प्रभ जाने रह अलभ चलते कर आने ऊपर आद सर्व दलोई सच नाम।

कथ कथ लुजे, सतगुरु सेवे की वड्याई तृष्णा भू गवाईए। आपे आ मिले तां बूझे, ज्ञान भी होना किसु न सूझे। गुर की दास सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाईए। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मिटे तुर फरमाया।

कबीर हर ना दुबलाए हो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो घर करे पी वह निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त हुए यों कहे रमे कबीर।

कबीर नाम किया ना करहेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया पयो कबीर कबीर।

कबीर जय दरियावत जाते ओहो हटके नाही कोय सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए।

कबीर रस को गांडो चूसी है, गुण को मरिए रोए। अब गुनिया रे मानस है, भलो न कह कोए। कबीर गागर जल परी, आज काल जय है फूट। गुर जो न चेत है अपनो, अदमाज लीजेंगे लूट। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाओ। गले हमारे जेवरी, जय खिंचे ते जाओ। कबीर जपनी काठ की, क्या दिखलावे लोए। हृदय राम न चेत ही, ये जपनी क्या होए। कबीर बिरहो पयंगम, मन बसै मंत न माने कोए। राम बेयोगी ना जिए, जिए तां बौरा होए। कबीर पारस चंदन है, तिन है एक सुगंध। ते मिलते उत्तम पये, लो काठ निर्गंध। कबीर जम काठिंगा, बुरा है ओ हो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिलियो, तिन लिया अंचल लाए। कबीर वैद कहे, हौ ही पला दारू मेरे वस। एह तो वस्त गोपाल की, जब पावे ले खस। कबीर नौबत अपनी, दिन दस ले हो बजाए। नदी नाव संजोग ज्यों, बोर न मिल है आए। कबीर सात समुंदे, मास करो कलम करो बन राए। बसदा कागद जाओ करो, हर जस लिखन ना जाए।

कबीर रमैया कंठ मिल चुक है सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पंचो लड़के मार के रह राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं ये हो तन देवे फूक, अंधा लोग ना जाने रहे हो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चे चढ़ी सुनहो बीर मुसान, लोग सुबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो डूड दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर कह तू पया जाको कहता और।

कबीर कारण बपरा क्या करै, जो राम ना करै सुहाए। जे जे डाली पग तरो, सोई मोर मुर जाए। कबीर अबरह को उपदेश ते, मुख में पर है रेत। रास बिरानी राखते, खाया कर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो, जाओ की भूसी खाओ। होनहार सो होए है, साकत संग ना जाओ। कबीर संगत साध की, देन देन दूना हेत। साकत कारी कांबरी, तोए होए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। जो किछ किया सो मन किया, मुंडा मुंड अजाए। कबीर राम ना छोड़िए, तन तन जाए ता जाओ। चरण

कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए। सरपन होए कै उतरै जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै आहो ही रखै नार। गद ही होए कै उतरै पार सह मन चार। कबीर चतुराई अत कनी हार जप हृदय माहे। सूरी उपर खेलना गिरै ता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुख कहिए राम। देही किसकी बापुरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास। जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गै बाहन सगन घन लाख तजा फैराहे। या सुख ते भिखिया भली जो हर सिमरत दिन जागे। कबीर सब जग हो फिरयो मांदल कंध चढ़ाए। कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बिथरे अंधा निकसे ओ आए। जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजियो पूत कमाल। हर का सिमरन छाड़ कै घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोए। पाछे पाओ ना दीजिए आगे होए सो होए।

अजहु जियो न छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझको श्रवण सुनो तो नाओ। बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद। चरण कमल की मौज में है रहो अंत अर याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान। कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कह ना को पति आए। हर जैसा तैसा वो ही रहो हरख गुण गाए। कबीर चुगए चितारे पी चुगए चोग चोग चितारे। जैसे बच रहे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल। चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चक्की जो निस बिछड़े आए मिले प्रभात। जो नर बिछरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर राय नायर बिछोरिया रहो रे शंख मजूर।

जाका बासा गोर में है सो क्यों सोवे सुख। कबीर सूता क्या करहे उठ के ना जप हे मुरार। एक दिन सोवन हुए गो लांबे गोंड पसार। कबीर सूता क्या करहे बैठा रहो अर जाग। जाते संगते बिछुरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गैल ना छोड़ी है मार्ग लगा जाओ।

बासन कारो परसी है तो कछ लागे दाग। कबीरा राम न चेत्यो जरा पहुंचियो आए। लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कीनो करतार। तेस बिन दूसर को नहीं एक सिरजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब। जाए पूछे खसम को जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजे मोल ले मन हाथ तीर्थ जाहे। देखा देखी स्वांग तर भूले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार। इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागद की ओबरी मसके कर्म कपाट। पाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल क्रंता अब है कर अब करता सोए ताल। पाछे कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत एक देखिया जैसी थोई लाख। दिसे चंचल बहु गुणा मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जाम ना करे तिसकार। जिन ये हो जमुआ सिरजया सो जपिया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पये सबदास। ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच परयो कुटुंब कै कंठ रह गयो राम।

हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ ता क्या प्यासी राता ता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए। ताते भली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर भला राम भगत जेठाए। राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट। तहां कबीर है मट किया खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओड़। हीरा किसका बपरा पुजे न रतन करोड़। कबीरा एक अचंभो देखियो हीरा हाट बिकाए। बंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तय धर्म है जहां झूठ तय पाप। जहां लोभ तय काल है जहां खिमा तय आप।

एक अब घाट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के धोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किसका लाज सी जाब ले तरहे मसान। कबीर डूबो गेरे बोपरे बहु लोगन की कान, पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधु करी नाना बिद को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ा देश बाडू राज। कबीर दावै दाजन होत है निर्दावै रह निशंक, जो जन निर्दावै रह सो गण इंतर सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर, भाग बड़े तै पायो तू पर भर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसहे त्यों एहो खिसे शरीर, ए दो अखर ना खिसहे सो गह रहो कबीर। कबीर कोठी काठ की दह दिस लागी आग, पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर कर कागद दे विहाय, बावन अखर सोध कै हर चरनी चित लाए। कबीर संत न छाड़े संतई जो कोटक मिले असंत, मलियागर पुयंगम भेडे ओ ता शीतलता ना तजंत। कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन ज्वाला जग जा रिया सो जन के उदक समान। कबीर सारी सिरजन हार की जाने नाही कोए, कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर भली पई जो पौ परिया दिशा गई सब भूल, ओरा घर पानी पया जाए मिलियो ढल कूल। कबीरा धूर सकेल कै प्रिया बंदी देह, दिवस चार को पेखना अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देह, गुरु गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेह। जह अन पौ तह पै नहीं जह पौ तह हर नाहे, कहियो कबीर विचार कै संत सुनो मन माहे। कबीर जिन्हो किछु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हम हो जो बुझा बुझना पूरी परी बुलाए।
कबीर मारे बहुत पुकारे आ पीर पुकारे और लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सोहेली सेल की लागत ले उसास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग देहे दिल ही भीतर जोए शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए। कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए दिल में साईं प्रगट बुझे बलंती नाए। कबीर जोरी की ये जुल्म है कहता ना ओ हलाल दफ्तर लेखा मांगी है तब होए गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानी है मिटे वो तन ताप हरख सोग धजे नहीं तब हर अपहे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार सोई राम सब कह है सोई कौत कहार।

कबीर सतगुर सुर में बाह्या मान जो एक लागत ही पोय गिर परया परा करे जे छेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार बिन संग त्यों मानई होए गई पठचार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए अनिक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था अगे मिलया खुदाए साई मुझ स्यों लर परया तुझे किन फुरमाई गाए।

दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए। दफ्तर लेखा नीक से मार मोहे मोहे खाए। कबीर लेखा देना सुहेला जो दिल सूची होए। उस साचे दीवान में पल्ला ना पकरे कोए। कबीर धरती अरिया काश में दोए तू बरी आबाद। खाट दर्शन संसे परे अर चौरासी सिद्ध। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया जात देखो तत तू।

कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। एतूत कते न डोलई जिस राखे सिरजनहार।

जवा। कबीर कुकर भुंकना क्रंग पिछै उठताए, करमी सतगुर पाया जिन्हो लिया छुड़ाए। महला पंजवा। कबीर धरती साध की तस्कर बैसह गाहे, धरती भार न व्यापई उनको लाहू लाहे। महला पंजवा।

अपना चित व्या हर करै जो मेरे चित ना होए। महला तीजा। चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे। नानक सो साला ही है जे सबना सार करे। महला पंजवा।

कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, धंधे ही मैं मर गयो, बार पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटुके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल न छोड़ई, जम दिया दमा माया। कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग,

शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत। पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग परापति लिखिया हुए लीलाट।

जियो शंख चक्र गदा पद्म आप कियो छद्म अपरंपर पार ब्रह्म लख कौन ता हे जियो सत सा।

जियो अकथ कथा कथि न जाए तीन लोक रहया समाए सुतः सिद्ध रूप धरियो शाहन कह सहे जियो सत साच श्री निवास आद

सत जियो सेवक कह पारपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह ना सका को तू कदका ब्रह्मा बिसन सिरे तया गणत तिन कह मोह पया मन मदका चबरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सब हूं को तदका सेवक कह पार पूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसा आप ही चितवा आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थम्मन आपे किया कट कट बासा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सब विचार हो वाह वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल तल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना माना ब्रह्मादक रुद्रादक कालक काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाया परमार्थ सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाना शिव ब्रंच तर ध्यान नेता जिस बीत बखाना निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन करन समथ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसा श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्तह बसा गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कहो फोम धन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंजित रंग निवारण कहो मथुरा जन जान कही जी साच सो और कशु ना विचारन कहो हर नाम बोहित बड्डो कलमह पवसागर पार उतारन को संतत ही सत्संगत संग सुरंग रत्ते जस गावत है त्राम पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिबतार ना तावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन अगर गहर गंभीर अथाह आत बड सुपार सदा सब बिद रत्नागर संत महराल करह कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कलयुग दुरत दूर करबे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मन ध्यान धरा फिरता सगल जुग कबू को कौ पावा आत्म परगास को वेद बाणी सहित ब्रंच जस गावा जाको शिव मन गहनात जात कबलास कौ

भगत उजियारु, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कब कीरत जो संत चरण मुड़ लाग, तिन काम क्रोध मिट्यो जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कह गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निसबासर हर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पोमन, तुम मलियागर भगत सुभास। त्रू प्रहलाद कबीर त्रिलोचन, नाम लैत उपजो जो परगास। जिह पिखत अत हुए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जान्यो, कीनी भगत प्रेम लिबलाई। ताते अंगद अंग संग पयो साहिर, तिन शब्द सुरत कीनी बरखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही न जाई। सोडी सृष्ट सकल तारन को,

अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत धारा सुप्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बेबस कियो, काम गह केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान स्यों चढ़ियो। जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो होए सुमन्ना, पाव सागर बंदे हो सिख तारे सो प्रसन्ना। सिर आत पत सचो तख्त, सो जोग सो भोग सो जत बाल, गुर रामदास सच सल पहाण। तू अटल राज अपग दल, तू सतगुर चो जुगी आप आपे परमेश्वर। सुर नर साधक सिद्ध सिख, सेवंत तुरह तोहरा, आद जुगाद अनाद कला तारी त्रिलोहा, आगम निगम उदरन जरा जम आरोहा। गुर अमरदास थिर थप्यो, परगामी तारण तरना, आग अंतक बदै न साल कब। गुर रामदास तेरी शरण, सवैये महले पंजवे के, एको अंकार सतगुर प्रसाद। सिमरंग सोई पुरखिया चालिया बिनासी, जिस सिमरत दुरमत मलनासी। सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज बिचारंग। गुर रामदास कर कियो परगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस बखाणियो। भगत जोग कौ जैतवार, हर जन क्यो पायो, शब्द गुरु प्रकाश्यो, हर रसन बसायो। गुरु नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पायो। गुर अर्जुन कर गुर रामदास, भगत उत्तर आयो। बड पगी उन्माने, रिद शब्द वसायो, मन मानक संतोखियो। गुर नाम दृढ़ायो, अगमे अगोचर पर ब्रह्म, सतगुर दरसायो। गुर अर्जुन कर गुर रामदास, आन पौ ठहरायो। जनक राज बरताया, सतजुग आलीना, गुर शब्दे मन मानिया, आपती जपतीना। गुर नानक सच नीम साज, सतगुर संगलीना। गुर अर्जुन कर गुर रामदास, अपरंपर बीना। खेल गूड़ो कियो हर राय, संतोख समचरियो। नाम टेक बिमल बुध सतगुर समानो, अजोनी संग पवियो, सुजस कल कवियन बखानियो। गुर नानक अंगद वरियो, गुर अंगद अमर निदान। गुर रामदास अर्जन वरियो, पारस परस परमान। सद जीवन अर्जन अमोल, अजोनी संग पाओ, पै पंजन पर दुख निवार। अपार अनंग भाव, अगह गहन प्रम प्रांत, दहन शीतल सुख दातो, असंभव उद्भव पुरख पूर्ण विधातो। नानक आद अंगद अमर, सतगुर शब्द समायो। धन धन गुरु रामदास गुर,
जिन पार्स परस मिलायो जह जह कार जास जग अंदर मंदर पाग जूत सेब रहता गुर पूरा पायो बड पगी लिब लगी मेदन पर सहता पह पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बकता कुल सोडी गुर रामदास तान धर्म तुजा अर्जुन हर भगता त्राम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारन शब्द सार हर सम उधार मेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुट सतवंत हर नाम मंत्र नवनिद ना निखुट गुर राम।

त्रिलाव सहस जिय राह पर रहियो मा कहो अवर न ढंग नानक गुरमुख छुट्टी हर प्रीतम सो संग बाग मरै मन मारी जिस सतगुर दीखिया होए आप पछाण हर मिला बौड़ न मरना होए कीचड़ हाथ न बूडाई एका नजर निहाल नानक गुरमुख बुरे गुर सरवर सची पाल अगन मरै जल लोड़ लहो बिन गुर निद जल नाहे जन्म मरै परमाईया जे लख कर्म कमाहे जम जा गात न लगाई जे चल सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेला मेलाए तरवर कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नहाए मन तन मैला अवगुणी चिंझ भरी गंदी आए सरवर हंस न जानिया काग को पंखी संग साकत स्यो ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत।

आया कर संजोग पूला दयत ना समझई दिन प्रभ किए काम नानक बेपरवाह सो किरत ना मिटई राम लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा लाहौर शहर अमृतसार सिफती दा घर महला पहला उदो साह क्या निशानी तोट न आवा अन्नी उदो सी करे ही उठी कोड़ी रन्नी तम्मी सती रन्नी करे स्यापा।

सदा सदा सुरति ही पात होय, सर्फ सर्फ सदा सदा एवं गई बिहाय। नानक किसनों आखिय, बिन पुछिया।

अंत न पारावार हर कृपा करके बख्श लो पापी वड गुनहगार। हर जियो लेखे वार नावी तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हार पा मेलिया सब के लिए काट वकार। जिन्ना हर हर नाम ते आया जा नानक तिन जयकार। विछड़ विछड़ जो मिलाए सतगुर कह पै पाए जन्म मंडे चल पाए गुरम नाम ते आए। गुर साधु संगत मिले हीरे

थोड़ींदो जे चरे आप कर पाल शब्द अखोट बाबा नानका खाए गरज तन माल खां भवे कांदड़े जेला किन्ना सामी तोल तन जड़ाई आपने लहां सो सजन टोल सजन सचा पातशाह सिर शान देशा जैस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सजन सचा पातशाह सिर शान देशा जैस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार थकीन कहो नानक हर पज मना जे बेद जल को मीन बिखियन स्यों काहे रचियो निमग न हो अदास कहो नानक पज हर मना परे न जम की बास तरडा पोयो ही गयो लियो जरा तन जीत कौ नानक पज हर मना औद जात है बीत बिरद पयो सूज नहीं काल पहुंचो आन कौ नानक नर बाबरे क्यों न पजे भगवान तन दारा संपत सगल जिने अपनी कर मान इन मैं का संगी नहीं नानक साची जान पतित उदारन पै हरन हरे अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानी है सदा बस्त तुम साथ तन तन जय तो को दियो तास्यों ने हो न कीन कौ नानक नर बाबरे अब क्यों डोलत दीन तन तन संपै सुख दियो अरजय दी के ताम कौ नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिं न कोय कौ नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होय जे सिमरत गत पाई है ते पज रहत मीत कौ नानक सुन रे मना औद कड़त है नीत पांच तत को तन रचियो जानो चतर सुजान जह ते उपजो नानका लीन ताहे मैं मान कड़ गड़ में हर जो बस है।

पौन दे उतरै पार सुख दुख जे परस नहीं लोभ मोह अपमान कौ नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस्तत निंदया नाहीं जे

मदमाया कहंदा कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम बंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कौ नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान

प्राणी राम न चेतही मद माया के अंदर नानक हर भजन बिन परत ताहे जम्बंद सुख में बहु संगी पै दुख में संग न कोए कौ नानक हर भज मना अंत सहाई हो जन्म जरम पर मत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कौ नानक हर भज मना निर्भय पावे बास जतन बहुत मैं कर रहो मिट्यो न मन को मान

फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान करनो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद मन माया मैं रम रहो

किए, दुख को कियो न कोय, को नानक सुन रे मना हर पावे सोए। जगत पखारी फिरत है सबको दाता राम, को नानक मन सिमरत पूरन हो वै काम, झूठे मान कहाँ करे जग।

बेदहर भजो एक मन हो एक चित तीर्थ भरत हर दान कर मन में तरह गुमान नानक ने फल जात ते जो कू चरे स्नान सिर कंपे हो पग डग मगै

कट मिटै दर्श तोहारो ओए। मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पैयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पूंजे तिसका होए उदारो। एहे वस्त तजि न जाई नित नित राख्यो रितारो।

वा तन मन थेव हरे आ ओंकार सात गुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंज बरंगण संग लापे अठो नंदन प्रथुरा पैरो वै कर ही पंज रागनी संग उचाराई प्रथम बैर बिलावल ही पुनिया की गावे बंगल ही पुन ले के पे बारी ही है पैरों की पंचो नारी पंज मरद सासना वह बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावे ही अपनी अपनी भांत अस पुत्र भैरव के गावे गायन पातरे दुधिया माल कौस गला पहे संग रागनी पंचो था पहे गुण करी और देव गंधारी गंधारी से होती उचारी तनाश्री है पांचों गाई मारा कौ साग संगलाई मारू मतंग में वारा पर बलचन का उसके अबारा खड़े हो पौर नद गाये इस्तेमाल को साक संग लाए पुनायो हिंडोल पंजनार संग सोत उठे तान गलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरसी लह पार जा संलाई पंचों आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्रम में मंगल सहाये सरस बानो आये मनोदा गावे सस बसंत कुमोदा अशुभद्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी का शैली बड़ मंजरी टोडी कही अलाप का मोदियो गुजरी संग दीपक के था कालंका कुंतले ओ रामा कमल गो चंपा के नामा गौराव कला कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक कह जाना समय सिरा वह गावे पांचों संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गौरी गावे आसा बरी ते पासे सिंधवी अलापी सिराग से पांचों थापी सालो सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कौम अमीर खष्ट मेघ रावे गावे पांचो संग बरंगन लावे सोड गुण मलारी तो नी पुन गावे आसा गुण गुनी उच्चे सुरसो पुन गिनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरा दर के दर के दारा जबली तरनड़े जल तारा पुन गावे शंकर श्यामा मेघ राग पुत्रन के नाम खष्ट राग उन गाय संग राग नी तीस सब पुत्र रागन के

दास बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राम कली महला तीजा। आनंद क्याओ अंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पिया। मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह से ती। मन वजिया वधाइया, राग रतन परवार परिया। शब्द गावने आईया, शब्दो तां गावो हरि केरा मंजनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे। दुख सब विसार ना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवार ना। सब न गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरे सब जय दे सो पावे। इसदा सिसला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द घनेरे। कहे नान सचे साहेब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छां सब पुजाईया। सदा गुरबान कीता गुर विटो जे दिया वड़िया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पन शब्द कर सुभागे। कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दो तो वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तो जिन को से नाम हर के लागे। कह नानक ते सुख हुआ तितकार अनहद वाजे। आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे